0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिना कर मुझे आबाद किया।

0: साकेत
1: गुरुदेव
0: साकेत गेट अप माय बॉय
1: गुरुदेव
0: आई न्यू यू वुड कम गुरुदेव
2: जय बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की
3: जय
2: बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की
3: जय
0: साकेत Where did I go in the first place? Have I not promised you that for those who seek me from the depths of their heart, I am bound to them?